0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोज, ते हां पनीर दी भुर्जी। बिल्कुल ना भूलिया जे, लोकेटेड ने 7171 टोरब्रम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।
3: मैनू पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाल ही सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस का हो जाओ शिकार, तो कौन भरेगा तुहाडे घर की मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी की गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमरप्रीत चावला नू, जिन्हां तो मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकते हो, ते नाल ही विजिटर वीजा इंश्योरेंस, सुपर वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस, आरईएसपी ते होर इन्वेस्टमेंट्स लई हुणे करो कॉल उमरप्रीत चावला नू 6474461616 उमरप्रीत चावला।

क्या बात है, वेरी नाइस, बड़ा शानदार गीत ते म्यूजिक यार बड़ा वधिया। ट्रू स्कूल दा ए म्यूजिक है, देसी टच दे विच सुन के बंदे दा मलोमली दिल करदा है वी यार, मोढे हिल ही जांदे आ बंदे दे, ते मोढे हिलाने भी चाहिए आ, नाले कसरत हो जांदी, नाले बंदे दा मन खुश हो जांदा। प्रोग्राम सरव रेडियो, तुहाडे होस्ट सरवजीत सिंह दे नाल। बड़ा ही शानदार इंटरेस्टिंग सवाल तुहानू आपां पुछ रहे हैं, तुहानू की लगता है सब तो वध जिहड़ा इंसान, कोई भी इंसान सब तो वध झूठ बोलता, झूठ जिहड़ा बोलन दे विच कॉमन है, सब तो वध बोलन जाण वाला झूठ किहड़ा है? ते 905-673-3337 गल बड़ी शानदार की उन्होंने, कहिंदे भी सब तो ज़्यादा बंदा यही कहिंदा, हाँ जी की हाल चाल है, ठीक है। हुण ओह ठीक है किन्ने परसेंट ठीक है ये नहीं पता, परसेंट एक ठीक है कि परसेंट 100 ठीक है, बट ठीक है। पर होर की जवाब हो सकता है, तुसी सुनते हो आम ही, ये आप रियल गल कर रहे हैं, रियल अपनी लाइफ दे विच, कोई इदा बई अपने वालों मारन वाली गल नहीं, रियल दे विच, रियलिटी दे विच। 905-673-3337 ते कॉल करके जरूर शेयर करो। जो इंसान कई बार गुस्से होवे ना, दूजा बंदा गल करे तो बंदा अगे आप ही कही जाता, नहीं मैं गुस्से नहीं हाँ, ना ना मैनू गुस्सा नहीं है। वह बंदा होंदा अंदरों गुस्से जी है बंद, पर कंट्रोल करके उन्हें कहता है, नहीं नहीं नहीं मैं गुस्सा नहीं करता, मैं गुस्सा नहीं हाँ। तो आ चीज भी बड़ी एक आम हो जाती है कि नहीं। 905-673-3337

0: विषय दसे कब बाज बिनती चौपाई
1: अमरी करो हाथ दे छूरन होए चित की इच्छा कब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिकारा हमरे दुष्ट सब तुम पाओ पाप काट के मुनि बचाओ
2: आपका स्वागत है।
1: I'm

अस्य श्री आदित्य कवच स्तोत्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदेवता कृणीये सूर्यगुं शक्तिः आदित्यं कीलकम् मम आदित्य प्रसाद सिद्धि।

शरणागतम जटाचूट समायुक्ति लोलाज भ्रांतकारिणी द्रुत बुद्धि करे देवी त्राहि मां शरणागतम।

पंडौ च चंडिका दक्षिणी भद्रकाली च नेरिद्यां च महेश्वरी वारुण्यां पातु वाराही वायुव्यां सर्वमंगला उत्तरी वैष्णवी पातु अदैशान्यां शिव प्रिया जलस्थले अंतरिक्षी पातु मां जगदंबिका इति ते कथितं वत्स कवचं च सुदुर्लभम् यस्मै कस्मै न दातव्यं प्रवक्तव्यं न कस्यचित् गुरुमभ्यर्च विधिवत् वस्त्रालङ्कार चन्दनैः कवच

ओम अथ श्री विचित्र वीर हनुमान माला मंत्र श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री विचित्र वीर हनुमान माला मंत्रस्य श्री रामचंद्रो भगवान ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री विचित्र वीर हनुमान देवता ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे सारा मंत्र जपे विनियोगः अथ कर्ण्यासुः। ओम राम शाभ्याम नमः। ओम रीम तर्जनीभ्याम नमः। ओम रूम मध्यमाभ्याम नमः। ओम रीम अनामिकाभ्याम नमः। ओम रौं गणिचिकाभ्याम नमः। ओम रः कर्तर्कर्भिष्टाभ्याम नमः अद अंगन्यासः। ओम राम हृदयाय नमः। ओम रीम शिरसि स्वाहा। ओम रौं शिखायै वषट। ओम नैषाम। ओम रौं नेत्रत्रयाय वषट। ओम रः अस्त्राय फट। अथ ध्यानम् वामेकरे वैरवहं वहन्तं शैलं परिशृङ्करमालयाध्यं दधानमाख्यामाद सुवर्णवर्णं भजीचरत्कुण्डलमाञ्जनेयम्। ओम नमो भगवते विचित्रवीर हनुमते प्रलयकालानल प्रभाज्वलत्रुतापवत्रदेहाय अञ्जनीगर्भसम्भूताय प्रकट विक्रम वीर दैत्य दानव यक्ष राक्षस ग्रह बंधनाय भूत ग्रह प्रेत ग्रह पिशाच ग्रह शाकिनी ग्रह डाकिनी ग्रह काकिनी ग्रह कामिनी ग्रह ब्रह्म ग्रह ब्रह्म राक्षस ग्रह चोर ग्रह बंधनाय एहि एहि आगच्छागच्छ आवेशयावेशय मम हृदयं प्रवेशय प्रवेशय स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर सत्यम कथय कथय व्याप्रमुखं बन्धय बन्धय सापमुखं बन्धय बन्धय राजमुखं बन्धय बन्धय सभामुखं बन्धय बन्धय शत्रुमुखं बन्धय बन्धय सर्वमुखं बन्धय बन्धय लंका प्रसाद भंजन सर्वजनं मे वशमानय वशमानय श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सर्वानाकर्षय आकर्षय शत्रून् मार्दय मार्दय मारय मारय चूर्णय चूर्णय खे खे खे श्रीरामचन्द्राज्ञया प्रज्ञया मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु मम शत्रून् भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रों ह्रैं रों रः फट् श्री विचित्र वीर हनुमते मम सर्व शत्रून् भस्मी कुरु कुरु हन हन हूं फट् स्वाहा। एकादश शतवारं जपित्वा सर्व शत्रून् वशमानयति नान्यथा इति श्री विचित्र वीर हनुमन्माला।

0: है आप सभी का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, या अली मदद, और सभी भाई सभी बहनों को मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो पहली बारी मदर्स बनी है उनको भी बहुत बहुत बधाई हो मदर्स डे की। तो अब अगर आप अपनी मदर के लिए बढ़िया सा टीवी लेके आना चाहते हो, फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, या फिर आउटडोर फर्नीचर, या फिर आपने किसी किस्म का भी आपको बारबेक्यूज चाहिए, लेटेस्ट गैजेट्स किचन के लिए चाहिए, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडलैंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन गोल्फ में। तो और जानकारी के लिए आप उनके वेबसाइट पे जाइए मदर्स डे स्पेशल देखने के लिए topchoiceelectronics.com, और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल करो, 9057990045। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी टीम आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं मदर्स डे की। और मदर्स डे ऐसा है कि अगर आपके बच्चे आपकी सम्मान करते हैं तो वही सबसे बड़ा जिंदगी का गिफ्ट है। आपके बच्चे जिंदगी में आगे निकल गए हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, वो भी आपके लिए मदर्स डे का सबसे रोज, हर रोज मदर्स डे है ऐसे हालात में, और हर रोज मदर्स को भी प्राउड है, बच्चों को भी प्राउड है कि चलो अपनी माँ की देखभाल कर रहे हैं। तो इसलिए फिर मदर्स डे के लिए आप ज्यादा, आपके लिए ये है कि आप उनके साथ टाइम बताएं। अगर एल्डरली हैं तो उनका आजकल क्या होता है कि ओल्ड एज में जो कैंस नहीं खुलते हैं, कई काम जो उनसे नहीं हो सकते हैं, तो उसके लिए आप उनसे सलाह बना लें, प्लान बना लें अपनी माँ से कि किस एक हफ्ते में, महीने में एक बार आप उसके लिए जरूर अपनी माँ के पास जाएं, और उनको अगर मुश्किल होती है इसी तरह के कई तरह के काम करने की तो उसमें आप उनकी हाथ बटाएं, मदद करें। वैसे तो अगर बच्चे लोग थोड़े लापरवाह हो जाते हैं, अपनी माँ की केयर नहीं करते हैं, तो यहाँ पे तो बहुत सारे सोर्सेस होते हैं बाहर के लोग, लेकिन जब अपने बच्चे होते हैं तो उसका जो इंसान को बच्चे आके करते हैं तो उसका जो उनका जो खून है वो बढ़ जाता है कि भी हाँ मेरा बच्चा आया, उसने मेरे पास टाइम बताया। इसी बहाने से आप अपनी माँ के साथ टाइम भी बता लेंगे, और टाइम ही सबसे बड़ी वैल्यूएबल चीज है जिंदगी में, और वही सबसे बड़ी गिफ्ट है मैं सोचती हूँ। तो आइए इसी विचार के साथ प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। बाकी तो मटेरियल थिंग्स होती हैं किसी ना किसी कोने में पड़े रहेंगे, तो फिर भी चलो जो भी आपको अच्छा लगे वो कीजिए, है ना, अपनी आपके दिल खुश जिससे हो। तो क्या होता है कि माँ की गोद जो होती है उसका भी एक अलग आराम जो मिलता है, जो शांति मिलती है। तो अगर आपकी माँ है तो आप जरूर कभी ना कभी उसकी गोद में जरूर बैठिएगा, क्योंकि उसका जो आपको शांति मिलेगी तो वो अलग ही चीज दुनिया से, दुनिया के कोई भी झूला आपको वो जो सुख है, शांति है, वो नहीं दे सकता। तो आइए आपको इसी विचार के साथ एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं, उम्मीद रखती हूँ कि आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। तो इसी तरह हम आपका जो मनोरंजन है करते रहेंगे। तो आज जो सभी रेडियो स्टेशन पे आएगा गाना जो आपको बहुत सुनने को मिलेगा, तो
1: तुमने मान ली तो मैंने क्यों मानी, तुम तो कौशल्या थे, मैंने अपने दुख में थी बना दी,

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा, तो इसी तरह हम आपका मनोरंजन करते रहेंगे। अब अपनी माँ के लिए आप सोने के गहने, सोने की बार, या फिर आप छोटे छोटे कोई आप डायमंड के सेट खरीदना चाहते हो, अप टू 70% ऑफ आपको मिलेंगे। ये आपको मिलेंगे अल मदीना ज्वेलर्स पे, मॉल्टन में एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। अल मदीना ज्वेलर्स की पूरी टीम आपको इस मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, तो आप उनकी मदर्स डे स्पेशल का फायदा उठाइए। और जानकारी शादी के लिए, एनिवर्सरी के लिए आपको डिजिटल गहने चाहिए, ब्राइडल सेट चाहिए लेटेस्ट डिजाइन के, तो आप अल मदीना ज्वेलर्स पे जाइए। और जानकारी के लिए आप 905-673-0100 पर कॉल कीजिए, 905-673-0100 पे आप कॉल कर सकते हैं। तो अब अगर आपको किसी किस्म का भी आपने बढ़िया सा आपने घर खरीदना है, होटल मोटल खरीदना है, किचन और वाटर वॉल्क में, तो आप रिसीप्शनिस्ट को कॉल कीजिए 519-546-1260। आपने किसी किस्म का भी बढ़िया सा आपने ट्रक की रिपेयर करवानी है, तो बेस्ट ट्रक रिपेयर एंटायर सेंटर आपके लिए बहुत ही बढ़िया आपकी सर्विस देते हैं वो, तो ये है आपके लिए बेस्ट ट्रक रिपेयर एंटायर सेंटर 1715 पे मौजूद है। और जानकारी के लिए 905-624-0055 पर कॉल कीजिए, 905-625-0055 पर कॉल कीजिए। अगर आपने बढ़िया खाना लाइव कुकिंग करवानी है किसी भी इवेंट के लिए, अभी पिकनिक्स बहुत सारी होंगी बहुत सारी कंपनीज की, तो आप न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे मिसिसागा में मौजूद है, तो लाइव कुकिंग के लिए आप उनको कॉल कर लो 905-814-1703 905-814-1730। वहाँ पे भी मदर्स डे के लिए अपनी मदर को ले जा सकते हैं, न्यूली रेनोवेटेड है, तो ये है आपके लिए न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। तो अब अगर आपने घर खरीद लिया, मूविंग तो करना होता है, बहुत सारी मूविंग होती है समर टाइम में, तो आप एचके मूवर्स का नाम याद रखिए, कनाडा भर में आपकी मदद करते हैं मूव होने में, बहुत बढ़िया आपका बहुत बढ़िया तरीके से आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आप उनको कॉल कर लीजिए 416-524-404, अभी कॉल करके अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-6704 HK Movers। तो अब आपके लिए एक और बढ़िया सा पंजाबी का गीत मैं सुनाती हूँ आपको, ये बड़ा कॉमन है पर बहुत ही बढ़िया आपके लिए ये जो गीत है आपके लिए बहुत ही कुलदीप माणक जी का गाया हुआ ये गीत है, तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

0: जी हाँ, तो एकदम उन्होंने फॉर एवर सॉन्ग ये फॉर एवर जैसे ग्रीन सॉन्ग उन्होंने गा दिया और सदियों तक लोग वो तो नहीं रहे दुनिया में कुलदीप माणिक जी, लेकिन उनका जो ये गाना है ये जब तक दुनिया रहेगी लोग इसको सुनते रहेंगे और सराहते रहेंगे। और हम किस्मत वाले हैं कि जो कि हमने उनको देखा है और उनको लाइव देखा है, गाते हुए देखा है। तो आइए इसी विचार को लेके प्रोग्राम को आगे बढ़ते हैं, लेकर के बहुत बढ़िया प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो अब अगर आपने मूविंग करनी है तो आप एच के मूवर्स को कॉल कीजिए 416-524-704। वो कनाडा भर में मूव करने में आपकी पूरी मदद करते हैं, ये हैं आपके लिए एच के मूवर्स। और अभी तक आपने अपना टैक्स नहीं भरा है,
1: आपको अपनी आंखें चेक करवानी है, आई एग्जाम, आई ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेस, सन ग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस, तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल चिंकोजी एंड विलियम्स पार्क में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में। अल्फा ऑप्टिकल, एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल .ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-456-3 पर कॉल कीजिए 9054562733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
2: सिर में शक्कर पारे मक्खी बेसन पिस्ता बर्फी।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1150-216-213-1165।
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो आइए आपको और भी बढ़िया बढ़िया से गीत सुनाते हैं। पहले आपको बता दें, अगर आपने अपना टैक्स अभी तक नहीं भरा है तो गुरप्रीत रोडे को कॉल कीजिए 416-302-8135। पर्सनल हो या बिजनेस, आप गुरप्रीत रोडे को कॉल कर सकते हो अपने टैक्स भरने के लिए। तो अब अगर आपने टोरंटो आसपास के इलाके में घर खरीदना बेचना है तो आप खुशवंत सिंह व्यास को कॉल कीजिए 416-670-1313-416-677-1313 पर आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपने फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया लेनी है, मदर्स डे के लिए टीवी लेना है, गिफ्ट देना है, या फिर आपको किचन की गैजेट्स गिफ्ट देनी है, लेटेस्ट एडवांस्ड वंस, तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपको आपके लिए एयरपोर्ट पे मौजूद है, और दूसरा उनकी लोकेशन ब्रैम्पटन में आपके लिए, दूसरी लोकेशन उनके ग्वाल्फ में है। तो आप और जानकारी के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए और अपने ऑर्डर बुक करिएगा 905-799-0042। आपको आउटडोर अभी बारबेक्यू चाहिए, बढ़िया से बारबेक्यूज आजकल बहुत टेक्नोलॉजी वाले, डिजिटल वाले आगे हैं, तो आप ऐसे एडवांस वाले लेना चाहते हो ऐसी चीज़ें, तो आउटडोर फर्नीचर भी है, आपको बहुत एडवांस बढ़िया मिलेगा। तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए, मदर्स डे, फादर्स डे, किसी भी मौके के लिए आपको खरीदने हैं गिफ्ट्स, तो इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है ब्रैम्पटन में 905-799-0045 और 905-799-0045। जहाँ आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर आप उनकी स्पेशल्स का बारे में जान सकते हो और उसका फायदा भी उठा सकते हो। तो आइए आपको ये एक बढ़िया सा गिफ्ट सुनाते हैं।

जी हाँ, तो क्या कमाल के गाने हैं। जो पुराने गाने थे उनका जो फील था वो एक अलग ही चीज है, जब सुनते हो तो बहुत ही मन को भा जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम को लेकर के, और एक और बढ़िया सा गीत आपको सुनाते हैं। अब लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। ये भी इस दिल से

0: अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्त की तरफ है, तो आप इस गाने को एंजॉय करिएगा। बहुत ही इमोशनल है, लेकिन सच कह रहे हैं। नानक नाम चढ़ी कला तेरे पण इस वक्त भला।
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: पिज्जा डिपो दी एक नवी पेशकश, लोडेड फ्रेंच फ्राइज विद बटर चिकन और तंदूरी वेजी पनीर, एक बार ट्राई तक करो।
1: पिज्जा डिपो द पिज्जा, पिज्जा डिपो द पिज्जा।
0: पिज्जा डिपो, कॉल 310-9711,
2: दैट्स 310-9711।
1: पिज्जा डिपो द पिज्जा।
3: Welcome to Glitz by Gill's Banquet Hall, a beautiful space with modern design, state-of-the-art sound, state-of-the-art lighting, and wait till you see mouth-watering delicious food. Whether it's an engagement party, a wedding, a birthday party, or corporate event, Glitz by Gill's Banquet Hall has exactly what you need. Moments become a memory, memories become treasures. Call 905-724-7100, 2131 Williams Parkway, Glitz by Gill's Banquet Hall.
4: ओ हाँ भाई, अब बड़ी हाईवे ते डोर भोरी होई खड़ी है, की गल्ला?
5: आ एक्सीडेंट हो गया, कार दा टो ट्रक आए नू फोन कर लगी हां।
4: ओ टो ट्रक छड्ड, मैं सीधा करदा स्काईडोम ऑटो एंड बॉडी सेंटर वाले नू, नाले मैं ट्रक दा बॉडी वर्क भी कराउन जाना उते।
5: आहो मैं सुनया स्काईडोम वाले सारी इंश्योरेंस कंपनियां नाल डील कर दिया, नाल ही हुण मेरी कार दा एमिशन टेस्ट करा दो, नाल नवे टायर पवा दियो, उधरों ब्यूटी पार्लर जाना, उधरों कार दा पंगा। आ शेडी करो, स्काईडोम वाले नू फोन करो, 905-876-9878।
4: भाई घर वाली ब्यूटी पार्लर तो निकली होवे ते स्काईडम तो सोने ते सुहागे वाली गल हुंदी जे।

0: अतिशय दसे कबलो माट बिनती चौपाई अमरी करो हाथ दे छूरन होए चित की इच्छा लब चंदन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिकारा हमरे दुष्ट समय तुम ताओ पाप काट के मुनि बचाओ
1: आपका स्वागत है।
0: I'm

0: 枪，谁也是可以就把你有人唱，把你的路过一道可以可以上你的身体上的爱你的爱你的朋友的人生你的朋友。
1: एज एनी स्टेज जी हाँ उनकी स्पेशल देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सी ए पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-450-5 पर कॉल कीजिए 9054562733 अल्फा ऑप्टिकल योर विजन इज योर बिजनेस।
2: ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ

वं घ्रुं घ्रुं कामये देवी बलि होम प्रिये नमः उग्रतारे नमो नित्यं त्राहि मां शरणागतम्।

0: vidi kavacham vada narayana uvacha shrinu pravakshami he vatsa kavacham cha sudurlabham sri krishna naiva kajitam kripaya brahmane pura brahmana kajitam purvam dharmaya janavitati dharmena dattam mayam cha kripaya puskare pura Tripurarissa yatritva jagana tripuram pura mamoja brahma yatritva madukaidavayor bhayat sanjahana rattavijam yatritva patrakadika yatritva imaindrasya shankrava kamaladayam yatritva mahayodha
1: majjamalavadu नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा मज्जा मालवा द्वापा वेडिंग स्टोर।
2: यहाँ से आपको थाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 और 10 ब्रैम्पटन टेलीफोन 905-799-9400
0: शत्रु भयंकर यत्रित्वा शिवतुल्यश्च दुर्वासा जानिनां वर ओम दुर्गे चतुर्

आप सभी का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, या अली मदद, और सभी भाई सभी बहनों को मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो पहली बारी मदर्स बनी है उनको भी बहुत बहुत बधाई हो मदर्स डे की। तो अब अगर आप अपनी मदर के लिए बढ़िया सा टीवी लेके आना चाहते हो, फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, या फिर आउटडोर फर्नीचर, या फिर आपने किसी किस्म का भी आपको बारबेक्यू चाहिए, लेटेस्ट गैजेट्स किचन के लिए चाहिए, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन गोल्फ में। तो और जानकारी के लिए आप उनके वेबसाइट पे जाइए मदर्स डे स्पेशल देखने के लिए, topchoiceelectronics.com, और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल करो, 9057990045। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी टीम आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं मदर्स डे की। और मदर्स डे ऐसा है कि अगर आपके बच्चे आपकी सम्मान करते हैं तो वही सबसे बड़ा जिंदगी का गिफ्ट है। आपके बच्चे जिंदगी में आगे निकल गए हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, वो भी आपके लिए मदर्स डे का सबसे रोज, हर रोज मदर्स डे है ऐसे हालात में, और हर रोज मदर्स को भी प्राउड है, बच्चों को भी प्राउड है कि चलो अपनी माँ की देखभाल कर रहे हैं। तो इसलिए फिर मदर्स डे के लिए आप ज्यादा, आपके लिए ये है कि आप उनके साथ टाइम बताएं। अगर एल्डरली हैं तो उनका आजकल क्या होता है कि ओल्ड एज में जो कैंस नहीं खुलते हैं, कई काम जो उनसे नहीं हो सकते हैं,

0: उसके लिए आप उनसे सलाह बना लें, प्लान बना लें अपनी माँ से कि एक हफ्ते में महीने में एक बार आप उसके लिए जरूर अपनी माँ के पास जाएं, और उनको अगर मुश्किल होती है इसी तरह के कई तरह के काम करने की तो उसमें आप उनकी हाथ बटाएं, मदद करें। वैसे तो अगर बच्चे लोग थोड़े लापरवाह हो जाते हैं, अपनी माँ की केयर नहीं करते हैं, तो यहाँ पे तो बहुत सारे सोर्सेस होते हैं बाहर के लोग, लेकिन जब अपने बच्चे होते हैं तो उसका जो इंसान को बच्चे आके करते हैं तो उसका जो उनका जो खून है वो बढ़ जाता है कि भी हाँ मेरा बच्चा आया, उसने मेरे पास टाइम बताया। इसी बहाने से आप अपनी माँ के साथ टाइम भी बता लेंगे, और टाइम ही सबसे बड़ी वैल्यूबल चीज है जिंदगी में, और वही सबसे बड़ी गिफ्ट है मैं सोचती हूँ। तो आइए इसी विचार के साथ प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। बाकी तो मटेरियल थिंग्स होती हैं, किसी ना किसी कोने में पड़े रहेंगे, तो फिर भी चलो जो भी आपको अच्छा लगे वो कीजिए, है ना, अपनी आपके दिल खुश जिससे हो। तो क्या होता है कि माँ की गोद जो होती है उसका भी एक अलग आराम जो मिलता है, जो शांति मिलती है। तो अगर आपकी माँ है तो आप जरूर कभी ना कभी उसकी गोद में जरूर बैठिएगा, क्योंकि उसका जो आपको शांति मिलेगी तो वो अलग ही चीज, दुनिया से, दुनिया के कोई भी झूला आपको वो जो सुख है शांति है वो नहीं दे सकता। तो आइए आपको इसी विचार के साथ एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं, उम्मीद रखती हूँ कि आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। तो इसी तरह हम आपका जो मनोरंजन है करते रहेंगे। तो आज जो सभी रेडियो स्टेशन पे आएगा गाना जो आपको बहुत सुनने को मिलेगा, तो
1: ऐसी बात क्यों मानी? तुमने मान ली थी तो मैंने क्यों मानी? तुम तो कौशल्या थे, मैंने अपने दुख में थी तुम बना दी।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा, तो इसी तरह हम आपका मनोरंजन करते रहेंगे। अब अपनी माँ के लिए आप सोने के गहने, सोने की बार, या फिर आप छोटे छोटे कोई आप डायमंड के सेट खरीदना चाहते हो, अप टू 70% ऑफ आपको मिलेंगे। ये आपको मिलेंगे एल मदीना ज्वेलर्स पे, मॉल्टन में एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। अल मदीना ज्वेलर्स की पूरी टीम आपको इस मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, तो आप उनकी मदर्स डे स्पेशल का फायदा उठाइए। और जानकार शादी के लिए, एनिवर्सरी के लिए आपको डिजिटल गहने चाहिए, ब्राइडल सेट चाहिए लेटेस्ट डिजाइन के, तो आप अल मदीना ज्वेलर्स पे जाइए। और जानकारी के लिए आप 905-673-0100 पर कॉल कीजिए। 905-673-0100 पे आप कॉल कर सकते हैं। तो अब अगर आपको किसी किस्म का भी आपने बढ़िया सा आपने घर खरीदना है, होटल मोटल खरीदना है, किचन और बाथरूम बल्क में, तो आप रिसेप्शनिस्ट को कॉल कीजिए 519-546-1260, 519-546-1260। आपने किसी किस्म का भी बढ़िया सा आपने ट्रक की रिपेयर करवानी है, तो बेस्ट ट्रक रिपेयर एंटायर सेंटर आपके लिए बहुत ही बढ़िया आपकी सर्विस देते हैं वो, तो ये है आपके लिए बेस्ट ट्रक रिपेयर एंटायर सेंटर। 1715 सिसमल रोड मिसिसागर के मौजूद है। और जानकारी के लिए 905-624-0055 पर कॉल कीजिए। 905-625-0055 पर कॉल कीजिए। अगर आपने बढ़िया खाना लाइव कुकिंग करवानी है किसी भी इवेंट के लिए, अभी पिकनिक्स बहुत सारी होंगी बहुत सारी कंपनीज की, तो आप न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे मिसिसागा में मौजूद है, तो लाइव कुकिंग के लिए आप उनको कॉल कर लो 905-814-1703, 905-814-1730। वहां पे भी मदर्स डे के लिए अपनी मदर को ले जा सकते हैं, न्यूली रेनोवेटेड है, तो यह है आपके लिए न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। तो अब अगर आपने घर खरीद लिया, मूविंग तो करना होता है, बहुत सारी मूविंग होती है समर टाइम में, तो आप एचके मूवर्स का नाम याद रखिए, कनाडा भर में आपकी मदद करते हैं मूव होने में, बहुत बढ़िया आपका बहुत बढ़िया तरीके से आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आप उनको कॉल कर लीजिए 416-524-8004, अभी कॉल करके अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-6704 HK Movers। तो अब आपके लिए एक और बढ़िया सा पंजाबी का गीत मैं सुनाती हूँ आपको, ये बड़ा कॉमन है पर बहुत ही बढ़िया आपके लिए ये जो गीत है आपके लिए बहुत ही कुलदीप मानक जी का गाया हुआ ये गीत है, तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

0: जी हाँ, तो एकदम उन्होंने फॉरएवर सॉन्ग ये फॉरएवर जैसे ग्रीन सॉन्ग उन्होंने गा दिया और सदियों तक लोग वो तो नहीं रहे दुनिया में कुलदीप माणिक जी, लेकिन उनका जो ये गाना है ये जब तक दुनिया रहेगी लोग इसको सुनते रहेंगे और सराहते रहेंगे, और हम किस्मत वाले हैं कि जो कि हमने उनको देखा है और उनको लाइव देखा है, गाते हुए देखा है। तो आइए इसी विचार को लेके प्रोग्राम को आगे बढ़ते हैं, लेकर के बहुत बढ़िया प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो अब अगर आपने मूविंग करनी है तो आप HK मूवर्स को कॉल कीजिए 416-524-704। वो कनाडा भर में मूव करने में आपकी पूरी मदद करते हैं, ये हैं आपके लिए HK मूवर्स। और अभी तक आपने अपना टैक्स नहीं भरा है,
1: आपको अपनी आंखें चेक करवानी है, आई एग्जाम, आई ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेस, सनग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस, तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल चिंकोजी एंड विलियम्स पार्क में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में। अल्फा ऑप्टिकल, एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल .ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-456-3033 पर कॉल कीजिए 9054562733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
2: सिर में शक्कर पारे मक्खी बेसन पिस्ता बर्फी

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड पर शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 हर पाउंड तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड ईटोबीको वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो आइए आपको और भी बढ़िया बढ़िया से गीत सुनाते हैं। पहले आपको बता दें, अगर आपने अपना टैक्स अभी तक नहीं भरा है तो गुरप्रीत रोडे को कॉल कीजिए 416-302-8135। पर्सनल हो या बिजनेस, आप गुरप्रीत रोडे को कॉल कर सकते हो अपने टैक्स भरने के लिए। तो अब अगर आपने टोरंटो आसपास के इलाके में घर खरीदना बेचना है तो आप खुशवंत सिंह व्यास को कॉल कीजिए 416-670-1313-4167-71313 पर आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपने फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर बढ़िया लेनी है, मदर्स डे के लिए टीवी लेना है, गिफ्ट देना है, या फिर आपको किचन की गैजेट्स गिफ्ट देनी है लेटेस्ट एडवांस्ड वंस, तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको आपके लिए एयरपोर्ट पे मौजूद है और दूसरे उनकी लोकेशन ब्रैम्पटन में आपके लिए, दूसरी लोकेशन उनके ग्वाल्फ में है। तो आप और जानकारी के लिए topchoiceelectronics.com पर जाइए और अपने ऑर्डर बुक करिएगा 905-799-0042। आपको आउटडोर अभी बारबेक्यू चाहिए, बढ़िया से बारबेक्यूज आजकल बहुत टेक्नोलॉजी वाले डिजिटल वाले आगे हैं, तो आप ऐसे एडवांस वाले लेना चाहते हो ऐसी चीजें तो आउटडोर फर्नीचर भी है, आपको बहुत एडवांस बढ़िया मिलेगा। तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए, मदर्स डे फादर्स डे किसी भी मौके के लिए आपको खरीदने हैं गिफ्ट्स। तो इंटर मॉडलैंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है ब्रैम्पटन में 905-799-0045 और 905-799-0045, जहाँ आप topchoiceelectronics.com पर जाकर आप उनकी स्पेशल्स का बारे में जान सकते हो और उसका फायदा भी उठा सकते हो। तो आइए आपको ये एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं। ये दिलीप कुमार यादव से फिल्म आन

बना लूं तुझको अगर इस रोज तो मेरा नाम नहीं। पत्थर कट कर पानी कर दूं ये तो कोई मुश्किल काम नहीं। छो

जी हाँ, तो क्या कमाल के गाने हैं। जो पुराने गाने थे उनका जो फील था वो एक अलग ही चीज है, जब सुनते हो तो बहुत ही मन को भा जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम को लेकर के, और एक और बढ़िया सा गीत आपको सुनाते हैं। अब लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। ये भी इस

अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है, तो आप इस गाने को एंजॉय करिएगा। बहुत ही इमोशनल है, लेकिन सच कह रहे हैं। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी स्वाद दा भला।

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

0: सतगुर होए दयाल तो सरदा पूरी है, सतगुर होए दयाल न कब हूँ झूरी है, सतगुर होए दयाल तो दुख ना जानिए, सतगुर होए दयाल तो हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों को माणते हुए जुड़ चुके हैं एक बार फिर एक खूबसूरत सवेर और खूबसूरत सवेर दे खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरा लैके मैं थोड़ा अपना मेज़बान प्रभ संधु। सो गल्लां बातां करांगे। सो हुण तो लैके स्टूडियो दी घड़ियां दे मुताबिक 6:13 हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत सवेर और खूबसूरत सूरज दीआं किरणां दे नाल चढ़दी कलां नाल एक बार फिर खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम लैके हाजिर हो चुके हैं। सो थोड़ी देर तक रमेश हुशियारपुरी जी आ जाणगे। सो पंजाब दा भारत दा सारा हाल थोड़े नाल फिर बयान करनगे। सो गल्लां बातां चलदियां रहणियां है। सो नाल दी नाल समा अपने कोले हुण 15 मिनट रह गए। सो 15 मिनटां तक रमेश जी आ जाने, तद तक आपां गल्लां बातां करदे हां। सो 905-673-3337 स्टूडियो दा इक नंबर आ। सो गल्लां बातां करांगे नाल दी नाल। आपां अज खबरां थोड़ियां जिहियां करारियां हैं जी, आप कही करारियां कह सकते हैं आप। सो 905-673-3337 और थोड़ी गल्ला भी बहुत करारियां होंदियां। मैं कल पूरा दिन ही कई बार हुंदा कि ना शुरुआत थोड़ी गर्मा गर्मी नाल हो जाए तो फिर दिन भी थोड़ा गर्मा गर्मी लंघदा है। सो कल मैं पहली बार जदों मॉर्निंग दे सैशन दे विच आउण लग्गिया ना, तो क्योंकि मैं जदों शाम नूं प्रोग्राम करदा तो बहुत सहज मठा ते प्यार नाल गल्लां करनियां ते शेरो शायरी ते है ना वो अंदाज एक हुंदा, ते सवेरे भाई तुसीं प्रोग्राम नूं एक अलग लैवल ते गर्म करके रख दिओ राजनीतिक गल्लां ते वो जिहड़ा प्रवाह हुंदा। सो मैं वैसे राजनीतिक वाले पासे तो बहुत ज़्यादा दूर हाँ। सो मैं ना इधर ना उधर, आपां सिर्फ कहिंदे कि इंसानियत नूं प्यार मुहब्बत करन वाले आ। सो मैनूं कोई ज़्यादा बहुता फर्क नहीं पैंदा, पर आपां प्रोग्राम दी हमेशा जिहड़ी ना कहिंदे हुंदे आ कि एक प्रतिष्ठा निजम और जिहड़ी प्यार दे नाल सारियां चीज़ां नूं आपां सर्वन करना है। आप गल्लां बातां भी करांगे और ना बड़ा कोई भी मैनूं लगता कि कोई भी गलबात है ना जे प्यार मुहब्बत दे नाल जिस चीज़ नूं डिस्कस किया जाए गल्लां नाल कहिंदे वड्डियां वड्डियां जंगां रुक जांदियां। सो गल्लां नाल जे मसले हल हो जाण, गल्लां ही जरूरी आ, गल्लां ही नहीं होंदियां अजकल बाकी सब कुछ हो जाता। सो अजकल इंसान भी इदां ही है ना, बोलदा नहीं आ घरां च परिवारां च जिथे मर्जी वेख लो बस गल्लां घट होंदियां, या तो फोनां ते लगे आ या अपने आप च बिजी आ। हुण बस चाह दियां प्यालियां फड़ लो और चाह तो चेता आया कि चाह बई सवेर दी चाह तो परसों गलबात कर रहे सीगे, कहते कि जिहड़ी सवेर दी चाह हुंदी आ वो बस दिन बना दिंदी आ। तो कई कहिंदे कि नहीं सवेरे नहीं चाह पीनी चाहीदी, ते पर मैं कहना कि यार चाह तो कोई किंतु परंतु नहीं आ, चाह तो साडा जन्म सिद्ध अधिकार आ। सो चाह सिर्फ चाह थोड़ी आ, गुस्से शिकवे दूर करन दा तरीका है। चाह सिर्फ चाह थोड़ी आ, गुस्से शिकवे दूर करन दा तरीका है, ते इनू पीण दा भी एक सलीका है। चीक ला के नहीं पीदी, सिप सिप पीदी आ। सो हर सिप दे नाल कहिंदे दिलां दे भेत खुलदे ने। सो इनू पींदे गल्लां करदे लोकी फिकरां नूं भुलदे ने, तकरार तो लैके प्यार दीआं गल्लां फिर जित तो लैके हार दीआं गल्लां, जिनू लत लग जावे इहदे बिना फिर आउंदा साह थोड़ी आ। जो दसदे आ कि लोकी कहिंदे कि इहदे नुकसान बड़े ने, इहदा कोई गवाह थोड़ी आ, ते चाह सिर्फ चाह थोड़ी आ। सो चाह फिर चाह थोड़ी आ। सो चाह ते आप जिन्नियां मर्जी गल्लां बातां कर सकते हैं। सो 905-673-3337 905-673-3337 ते गल्लां बातां होणियां जी। सत श्री अकाल भाई जी, तुसीं आउंदे रहो।
1: गुड मॉर्निंग
0: जी। जी गुड मॉर्निंग सर, की हाल चाल?
1: बस वधिया भाई, सवेरे सवेरे थोनू सुन के अज वधिया लग्या। मैनू नहीं पता सीगा कि तुसी सवेरे सवेरे भी आते हो। 9 to 10 दा रोज सुनेदा सीगा, ते अज मैं वही रेडियो ऑन कर लिया। यूजुअली लाइक कुछ होर ही चलदा पिया हुंदा।
0: मैं नंबर देखिया मैं क्या नंबर तो साढ़े शाम वाला आ, पर सवेरे कि आ गया। मैं क्या शायद मैं ही नींद च तुरिया फिरदा।
1: क्या बात है
0: बिलकुल। फिर करो इंजॉय, रेस्ट करनी होनी है। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਫੇਰ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ
1: ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।
0: ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਸੁਣੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ, ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੜਕਾ ਫੜਕਾ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਹ ਪ੍ਰਭ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਕ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਾਈ। ਸੋ 905-673-3337। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਕ ਆ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 9-10 ਵਾਲੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਮੱਠੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਲੀਕਾ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ 905-673-3337 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਬਸ ਸਮਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਸ ਕੁਛ ਕੁ ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈਏ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਸੌਂਗ ਦੀ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਜਾਓ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ, ਪਹਿਲਾਂ 905-673-3337 905-673-3337 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਪ੍ਰਭ ਸੰਧੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ 7603। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ?
2: ਸੋਹਣੀ
0: ਚੱਕਰ ਕੀ
2: ਮੱਚ,
0: ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਬਸ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਸ ਆਹੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਦਾ ਹਾਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦੱਸ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਦਾ ਹਾਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦੱਸ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੁਲਾਤਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਕੇ, ਅਤੇ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਏ ਦਿਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਣੀ ਦੱਸ ਕੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਬਸ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਗਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਸੋ 905-673-3337 ਆਪਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ।

क्या बात है, बिल्कुल माँ वर्गा कहते कोई किरदार नहीं, माँ वर्गा कोई किरदार नहीं ते माँ वर्गा कोई यार भी नहीं, लख चाला किसे रोए थे पर माँ वर्गा कोई प्यार नहीं, अपने हिस्से दा जो तैनू खुआ दे ते माँ वर्गा दिलदार नहीं, जिदे नाल सारिया खुशियां ते माँ वर्गा कोई संसार नहीं, सारे रिश्ते एक पासे ते माँ वर्गा कोई प्यार नहीं। सो अज मदर्स डे आ ते तुसी बेहतर जानते हो कि मदर्स डे नू किस तरह तुसी सैलीब्रेट करना, तुसी सारे सियाने हो सूझवान हो, पर मैं तो सिर्फ एको ही गल कहूँगा कि जे तुसी अपनी माँ नू कोई वधिया तोहफा दे सकते हो तो वह है समा, जरूर समा दो अपनी मावां नू, गल्लां बातां करो, दुख सुख करो। सो बस गल्लां बातां ही आ।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए। Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
1: Garnishment, power of sale notice, bank walo paise di mang, unhe hi sanu call karo. Phir to anu koi nahi kar sakega tang. Karza maaf karao. 100% mansik shanti pao. Collection callon to chutkara. Bina vyaj nikiya nikiya kishta. Call karo Canada Consumer Credit Assistance 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
2: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दांगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दे, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए। देन सडनली तुसी ए कमर्शियल सुन दे।
3: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग। हरजिंदर गिल ते छड़ दवो, तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com, हेल्पिंग यू टू फुलफिल योर रियल एस्टेट प्लान्स।
4: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862। जी मीडिया ग्रुप।

0: टिक्का जंक्शन लेके आए ने स्पेशल ऑफर्स फॉर फेस्टिव सीजन। खास फेस्टिव सीजन ले केटरिंग स्टार्ट सिर्फ 9.99
1: जिस विच मिलनगियां 8 आइटम्स ए लाइव केटरिंग भी कर देने।
0: फंक्शन बड़ा होवे या छोटा केटरिंग वाला ता सिरा ला देंगे।
1: एना कोल शानदार पार्टी हॉल भी आ, वो भी रीजनेबल फूड प्राइसेस पे।
0: इस फेस्टिवल सीजन बनाओ अपनी खुशियां नु दुगना ते पहुंचो टिक्का जंक्शन।
1: कॉल 6474294040
0: जंक्शन, खुशियां दा सेलिब्रेशन।
2: देखो जी, करता है अपना नंबर वन, पर मेरा दिल करता है अपना घर सारियां तो सोना होवे।
3: बस इन्नी गल, हो कार

0: listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000.
1: Punjabi Versa, radio and television present.
2: Bhajan and Ghazal Samrat, Anup Jalota Ji. Are you coming to your city, show your eyes.
3: Embassy Grand Convention Center, you will meet on 2 November. जरूर आइएगा, भूलेगा नहीं। ये एक गजल भजन इवनिंग है, लेकिन इसमें मैं अपने सीनियर आर्टिस्ट का ट्रिब्यूट भी दे रहा हूँ, कुछ उनके गाने भी वहाँ पेश करूंगा।
2: गाने भी सारे सुनहरे और आवाज भी सुनहरी, अनूप जलोटा जी की। फॉर टिकट्स गो टू इवेंट ब्राइट और कॉल सिंगर जी एट 647-448-1000, 647-448-1000।
1: नवंबर 2nd शाम को 5 बजे मिलते हैं एम्बेसी ग्रैंड कन्वेंशन सेंटर 8800 द गोर रोड ब्रैम्पटन।
4: ओ आज तां कमाल ही होगी, घर वाली कहंदी किचन च रोटी ओदों ही बनू जदों नवे अप्लायंसेस आउणगे। मैं गया लाइनी क गल, उसे वेले गड्डी चक्की ते ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस दे मूरे ले जा खड़ी करती।
5: जी हां, एन्ना ही सौखा है अपनी किचन नु एक नवा रूप देना। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस दे सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलणगे, हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस दे। फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, लॉन्ड्री सेट जो मर्जी ले जाओ। 801 बोवे ड्राइव नियर चकूजी, 905-450-2888। ਘਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਵੀ ਹਾਈ ਐਂਡ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ।
4: ਹਾਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਲਈਡੀ ਟੀਵੀਜ਼, ਸਭ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਖਰੀਦੋ, ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਦੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ 905-450-2888-905-450-2888।
6: A1 केक्स एंड पेस्ट्रीज 1997 तो थोड़ी सेवा करता आ रहा है। केक्स, पेस्ट्रीज, मिठाइयां, समोसे ते पार्टी डेकोरेशन भी ले सकते हो। नकल करके केक्स ते पेस्ट्रीज बेचण वालियां तो बचो ते जसपाल नागरा नु फोन करो।
1: ਕਾਰਾਂ, SUV, ਟਰੱਕ, ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੋਫੇ, ਕਾਰਪੇਟ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 416-475-6600। $100 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 416-475-6600। ਸ਼ੈਂਪੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਿਸ਼ ਲਿਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਣਗੀਆਂ। 416-475-6600।
7: अस्थमा,
8: पुराना जुकाम,
7: छिक्का होना,
8: बलगम,
7: स्किन एलर्जी,
8: वीट एंड मिल्क एलर्जी,
7: सोरोइसिस,
8: कब्ज अते हेयर लॉस,
7: एसिडिटी वर्गियां बीमारियां दा सफल अते पक्का इलाज आयुर्वेदिक दवाइयां नाल।
8: बायो वे क्लिनिक, आज ही संपर्क करो 905-790-1500,
7: 905-790-1500। बायो वे क्लिनिक, तुहाडे शहर ब्रैम्पटन विच,
8: जो आए सो राजी जाए।
7: बायो वे क्लिनिक।
1: PNC and Company, one stop financial service, accounting and tax, small business and personal loan, mortgage service, real estate investment service, POS system provider, government grants waste, one stop financial service te aao. PNC and Company, 4 location to serve you, Brampton, Mississauga, London, Oakville, one stop financial service. For more information, call Chaudhary Heather 437-262-7743, 437-262-7743.

0: एंड सर्टिफाइड हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट फ्रॉम टॉप चॉइस इंश्योरेंस एजेंसी।
1: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी, ब्रैम्पटन निवासियों ले खुशखबरी। हुण जदों भी तुसी कैनेडियन, इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो तो ब्रैम्पटन विच इंडियन फ्रूट लैंड दी चारों लोकेशनां विचों जिथे मर्जी आ जाओ, चाहे 15 फैंडोवे ब्रैम्पटन होवे जां दूजी लोकेशन 45 डस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड, ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड ब्रैम्पटन। ग्रोसरी सब तो नेड़े, इंडियन फ्रूट लैंड 905-456-9900।
2: रिच पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली।
3: ओ की कर देने तेरे रिच पीपल,
4: तेरे वांग रोज काम ते नहीं जांदे, डॉलर्स नाल डॉलर्स बनाउंदे ने। चल एक गल दस, तेरा मिलियन डॉलर्स दा कार पेड ऑफ है, की तेनू काम ते जान दी लोड हैगी है?
3: काम ते जाना ही पैना, डॉलर कित्थों आणगे?
4: बस यही फर्क है, तू डॉलर्स लई काम करदा है ते रिच पीपल डॉलर्स इन्वेस्ट करके बैठ के खांदे ने। जे तुसी भी ऐदा चाहुंदे हो तां हुणे कॉल करो जसविंदर ढिल्लों नूं 416-278-6869 ते।
3: मैं कल ही जाके आना।
4: रिच पीपल अज दा काम कल ते नहीं छड्डदे, हुणे कॉल कर 416-278-6869।
5: ए टू जी किचन कैबिनेट, बई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार करदे हन। लक्की भाजी दीआं बणीआं किचन कैबिनेट देखे गुआंढी वी बहाने नाल तुहाडे घरे आउंदे हन। शीशे नाल भरीआं किचन कैबिनेट वास्ते, डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते ए टू जी किचन कैबिनेट 416-720-7073 905-720-7073 ते कॉल कर सकदे हो।
0: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਫਿਰ ਪਲੈਨਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਅਪਰੂਵਲ ਫਾਸਟ ਨੇ, ਕਵਰੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਨੰਬਰ ਹੈ 416-524-3535, 416-524-3535, ਵਿਧੀ ਛਾਬੜਾ ਫਰੋਮ ਪਲੈਨਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ।
6: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000.
7: Toronto's number one station, AM 530.
8: Punjabi Versa.